राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पैरो वह करही पंच राग नि

ऐसे चन प्रताप थे जन बड़े प्रताप तीन लोग जय जय करे रे नाम सजाद हो रहा सगल द्वार को छाड़ के कहो द्वारो द्वार बाह के किला जस गोविंदा स्वार्द हो रहा राज परिगा खालसा आके रहे ना कोए कुआर होए सब लेंगे बचे चरण के होए दोहरा उठ के सभा मले जी कर कुड़ा पासार डंका बाजे पदे का रह कलंक अवतार चातर चक्रवर्ती चातर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सरदास सुजुगते दुकाल दरबार लक्ष्मी।

जी गुरु गरीब निवाज अंतर जामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान की हाजरियां भरते हुए गुरु की संगतों वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वालों बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह सतगुरु आप नाम जन कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता दे नाम दे दात काज

सभी मानस की जात सब एक पहचानबो। करता करीम सोई रस करहीम, ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही किसेव सब ही कुकुर देव, एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज, ओई मान सब एक बयान एक को भ्रमाओ है। देवदा देव जज गंधर्व तुरक, हिंदु न्यार न्यार देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान, खाक बात आतस ओ आव कोर लाव है। अल्लाह अभेक से पुराण ओ कुरान, ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट, आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भच, केत अच वछ हो सपच उठ जाएंगे। केत नभ बीच अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहा, काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत, कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी, कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त, कित सुहा पे चढ़त कित दुख को भरत है। कैन में उड़त कित जल में रहत, कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर, दान बड़े बोध हर, बोधक प्रबोध हर, जापसी घस हर चंदन लगाए हर, चुआचार बूझ हर पाहन चढ़ाए हर, लापसी गा हर गोरन मनाए हर, मडी मडली पहार वेतन लगाए हर, छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर, किन्नर सब पच हर, पंडित तपंत हर, तापसी त्व प्रसाद भुजंग प्रयात छंद। न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न मित्पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न भामं लेखं भेखं जूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं। नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा, बासता को फिरे कौन भेखं कहा। नामता को कहा कह कहा वे कहा, कह बखानो कहे मैं नावे। न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं वेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। परे यं परा परं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छेयाद अद्वय अविनाशी। न जातं न पातं न रूपं न रंगे, नमो आद भंगे नमो आद भंगे। किते कृष्ण से कीट कोटे।

न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाते न जाते न पाते न सत्रे न वित्रे न वसोभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं नरूपं नरेहं नलोभं नचोभंग भूतंग फेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनि अच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग वंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवं सदा से

कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखदी रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ मद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं

देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राजसाजं कहु राजरीतं कहु पूर्ण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर के बारसी हो कहूँ पहलवे वस्तवे संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतन कहूँ।

भूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योत बान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं जेहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म

अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अक्षय तोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन पितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध पाह देसन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पवन हार कई गर्त

कहूँ वेद रीत जग याद गरम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म। कई देश देश भाखार डंत कई देश देश विद्या बड़ंत कई गर्त बांत बांतन विचार नहीं नैक तास पायतन पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सोभनम कई अग्न होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव तास पायतन पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मह को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गात गान गीत कहूँ करत

कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदव दास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदव दिश देखे मुरार बिन भगत संगत नहीं परत पान बहु करत हो मर।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव वरंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रंग न रूप रखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न बात न मात वितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करे नवखंड सचयो रज तामस तेज य तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रुबिंद नगिंद नगंग श्रेय जक्ष गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभिव नरंग नरपान रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतजोत भुजंग किये देव देव सराध वितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न बात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंपह किन्नर जक्ष जुवंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बलि वन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई

छूत मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जे चार चतुर्द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधो मुख ताप तप कई गलपन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धरम सभत जय एक चित्त कृपा निध को जप

भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म वेख है न तात मात जात है न पात जिहन वर्ण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अदवेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेक अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए गंज याद देव है कहो सु कैसे पाइये जिमी जमाल के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न वान है समान रूप जानिए मकीन व मकान अप्रमाण तेज मानिए न देह है न गे है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जाच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेग है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अवेग है बलि अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम बीज है सदा छिज तेज मानिए।

चक्र चिहन न वर्ण जा को जात पात न भेग, रूप रेख न रंग जा को राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंध दयाल स्वामी आद देवपाल, दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, वर्ण चिहन न चक्र जा को चक्र चिहन कार, जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न बरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन, दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख ब्रह्माथ, दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत में जय गाथ, भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज, आद अंत अनाथ श्रीपद परम पुरख भंज, धर्म के अन करम चेत कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्न

सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्माधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वहर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूमा का जले थले महे जबत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्री

एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विदतैन। दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहा श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुखुड़ा को मूढ़ता कहा तरक अब तरक। दोहरा को निंदा जस है कवन

असुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिदे आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदंशन महक मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदाहरण ऊर्ध अधे जय जय हो सी माखासुर मर्दन रमक वर्दन आदवृते डाबरू डवंके बबर बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण तमके यद सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय हो सी माखासुर मर्दन रमक वर्दन दयाज जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फलंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार पिपर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी माखासुर मर्दन भूमा का स्थल ऊर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सुष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आजन जोध प्रमाचन नृत्य नराजन धरम भृते

निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उबारण शुद्ध मते फणि अर्भुंकारण बाघ बकारण सहस प्रहारण साध मते सहते सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो से मै खासुर मर्दन भूम बदकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो से मै खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु घमंकण सद्र जमंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रण

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन मृष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकनी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाए पताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उधारण तेज प्रकर खण तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो श्री शास्त्र प्रकर्षण आद अनिल गाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तो

ज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विशोचन कौज कसे धाम निप्रहासे सुख सरणासे शुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरा।

जय किल विघवा जय सुखूप राजे मध उरं दुर्जन दल तय मंथन ऋझ सब नज रोहरण जय जय हो सी मासुर मदन चंड चक्र दन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण

वे प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड वितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय उसे मैं खासुर मर्दन आद अनाद गाद प्रते दुख दुख प्रबच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्ध

ली गर्भ कही ली ज्योत जति ले तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र जमकण दामिंदम कण आदृते डुक डुकी दमंके बाघ बुबंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो से माखा सुर मर्दन आद जुगाद नाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंड।

दुर्जन धर खण दुलंबर खण धरम दुजे धूमराज विधुंसन सुरणत चुनसन शुंभ न पादन शुंभ मथे जय जय हो से मखा सुर मर्दन आदय नीला गाद कथे त्व प्रसाद पाथड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम की हो आप करते पसार जद बहु तन भय आनंद तव कहो जथावत त्रैण तंत करता करी मकादर कृपाल अदवै भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जे नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई बलड सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै ना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जलधर प्रभाव सर्वत्र साथ जह जात पात नहीं भेद भरम जह रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी न जाय जह रूप रेख कहे बास तास कहे।

खेद भेद नहीं कर्म काल, सब जीव जंत के करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप, बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप, जह रूप रेख नहीं रंग राग, अंशिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंतन दुरंत, जह नेत नेत निस दिन उचरंत, पायो न जाय जह पैर पार, दी नान दोख दहता उतार। कई कोट इंद्र जह पान हार, कई कोट रुद्र जुगिया द्वार, कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत, जह नेत नेत निस दिन उचरंत, त्वा प्रसाद सवैये। दीनन की प्रतपाल कर नित संतु बारक, नी मन गारे पछ बसु नग नाग नराद, सर्व समय सबको व्रत पार। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं, कल के नहीं करम विचारे, दीन दयाल दया नित दोखन, देखत है पर देत नहार। दाहत है दुख दोखन गौदल, दुजन के पल मैं दल डारे, खंड अखंड प्रचंड पहारन, पूर्ण प्रेम के प्रीत संभार। पार न पाए सके पद मापत, वेद कतेब अभेद उचारे, रोज ही राज बिलोकत राज, करोख रुहान की रोज नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम, भूत भवेख भवान बनाए, देव अदेव खपे हंग बेवना, भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान, हसेब थके कर हाथ न आए, पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद, स्यों किन श्री पद मापत पाए। आद अनंत अगाध दवेक, सो भूत भवेख भवान अभय है, अंत विहीन अनात्मा बादाग दुख अछिद्र अछय है। लोगन के करता हरता, जल मैथल में भरता प्रभ है, दीन दयाल दया कर, श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह, न रोग न शोक न भोग, न भय है देह विहीन स्नेह, सबोधन नेह विरक्त अगेह अछय है। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है तुम्हरी सुत सुंदर श्री पद मापत ले है। रोकंते और सोकंते जल जोकंते, वो भांत बचावे, शत्रु अनेक चलावत गावत, तन एक न लागन पावे। रखत है अपनो कर दय कर, पाप समूहन भेट न पावे, और की बात कहा कहे तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा, भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे, भूम आकाश पताल रसातल, जाच भुजंग सब शरण्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहों को, नेत ही नेत भेद बतावे, खोज थके सब ही खुजिया, सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानन से रुम, नारिक से सब हूँ मिल गायो, वेद कतेब न भेद लखयो, सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद, सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो, ध्यान धरो तह को मन मै जह को, अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान, अभेद नृपान सब बजहारे, भेद न पाए सके अन भेद को, खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग, न साग न शोक न संग तिहारे, आद अनाद अगाद अवेख अद्वेख, जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कूट किए स्नान दिए, बहुदान महाव्रत धारे, देश फिरे कर वेश तपोधन, केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे, बहुन्यास करे मुखकारे, दीन दयाल अकाल भजे, बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कबित, अत्र के चलैया छित, छत्र के धरैया छत्र, धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है, दान के देवैया महामान के बढ़िया, अवसान के देवैया है कटैया जय मजाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया, महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है, ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता, देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल जावे, घोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे, अरब के अरब आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी, कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान, निज काम है मरहटा मंगेली तेरी बान, सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर, बंग सी बुंदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के, शीस ने आवे ते बते ध्याए, दुख देह के दलत है। जिने तो हे ध्यायो तिने पूर्ण प्रताप पायो, सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है।
देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश कंक धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुचात दाहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार कते ब्रह्मा मुख चार कते कृष्णा अवतार कते राम कहियत है। केते ससरासी कते सूरज प्रकाशी कते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन कते व्यासे ब्रवीन कते कुमेर कुलीन कते जच कहियत है। करते हैं विचार पैन पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानिये। अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए। जंत्र हूँ न जात जाय की बाप हूँ न माय ताकि पूर्ण प्रभा की सो छटा के अन मानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हों के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को पोगत है के प्रीतता की बासी है। जो कहूँ को जंत्र है के तेज हों को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हों को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के दुख को सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाइये न पार परावार हूँ को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हब्बसी हल विधावे पूर्वी न पार पावे असत्य नाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन ब्रवीन है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया ध्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छत्रानेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के कूल के। हंसनी सिसी हरुम हीरा सी हुसनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपासी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबनेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासीज के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है। भखरी गंधारी गोर कखरी गर्देजाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराजे जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ

श्लोक पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर महत कर्मी आपो।

0: थोड़ा अगे जांदे आ तुसी रुक जाओ, इन्हां नूं कहना ना ना जी इशनान करना, जो करना क्रिया सोधनी है इत्थे ही करना करो, साडे कोल ज्यादा समा नहीं है। जे उह कहिंदे वी थोड़ा अगे जाना ते इन्हां दे नाल जाओ, क्योंकि इन्हां दा विश्वास कोई नहीं है।
1: अपर करी ते कहे हटगावो,
0: ते इहने पापी ने की कीता, सात संगत जी निक्की जी गड़ी जड़ी है। क्योंकि कई बारी आपां वेखदे आ, कई बारी घर इहो जिहे हुंदे, वड्डी सड़क एक पासे हुंदी है, निक्कियां गड़ियां उह वी रास्ता उत्थों निकलदा है। ते जो इहदी हवेली सी ना प्यारिओ, शायद मैं ना भुलदा हूं मोचियां वाला गेट, शायद उन्हूं बोलदे हन, इत्थे इस पापी दी बेईमान दी जिहड़ी है हवेली सी, ते इत्थे इहने महाराज नूं रख करके कष्ट देने कीते। उहदे विचों ना निक्की जी गड़ी जिहड़ी जांदी सी। ते और एक गल याद रखो प्यारियो, इह दरिया जिहड़े हन, जदों समा पा करके दरिया दे वहिण जिहड़े हन इह बदल जाया करदे हन। हुण मैं बेनती करां प्यारियो, पंजाब आदिक इलाका जिहड़ा उस पासे दरिया जिहड़े हन, कई वारी उन्हां ने अपना रुख बदलना कीता, क्योंकि उत्थों दे दरिया जिहड़े जड़ दे डूंगे नहीं हुंदे हन। आपने वेख्या होवेगा ते जदों जाओ ना, ज्यादा डूंगा नहीं हुंदा प्यारियो, उथला पानी हुंदा, लेकिन रफ्तार दे नाल वहिंदा। साडे इलाकियां दे विच जिस तरह गोदावरी आदिक आप जी देखो बहुत डूंगी है, जे पूरी भर जावे 80-100 फिट दे करीब तां प्यारियो पानी जे पूरा भर जावे तां इन्ना पानी तां खड़दा ही है तकरीबन। कहण दा मतलब जिथे दरिया बहुत डूंगे हुंदे ना, उत्थे वैण नहीं मुड़दा। पहले अज प्यारियो दरिया रावी दरिया बहुत दूर कहिंदे चल गया, पहले ना लागों दी हो करके वगदा सी। इस तरह सात संगा जी दिल्ली दे विच यमुना भी जिहड़ी है, अज देखो यमुना बहुत दूर निकल गई, लेकिन किया जांदा किसे जमाने दे विच लाल किले दे लागों दी हो करके पिछले पासों दी हो करके ए जड़ी है अपनी यमुना जड़ी है वगिया कर दी। कहण दा मतलब अज प्यारियो दरिया जड़ा बहुत अगे वग गया,
1: बैठत कुछ ना अलावा।
0: कहिंदा के जे इशनान करनगे चुप चाप बैठे रहनगे, कोई विचार करनगे, उस वेले इन्हां नूं कुछ नहीं बोलना। जे कहणगे के नहीं थोड़ा मैं आसे पासे चहल कदमी करके आउणा, तां इन्हां नूं नहीं करन देना। कहिंदा इन्हां दे पिछे ही जिहड़े ना डांगा लै करके तलवार ढाल लै करके खड़ जाओ, जदों ज्यादा समा हो गया कह दिओ बस महाराज चलो वापस। इंज बहुत काड़ी दे नाल चुप चाप इन्हां नूं फिर तो अपने कोल हवेली विच लैके आउणा, ते नाल सिखां नूं वी इन्हां दे नाल रखणा, उन्हां नूं वी आसे पासे नहीं जाण देणा। इंज कह करके प्यारियो बेईमान ने बहुत ज्यादा तकड़ाई करनी कीती। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज इस बेईमान तो सुन करके महाराज जी ने चलना कीता। सतगुरु महाराज जी दे तन प्यारियो पूरे फलूहे जड़े हन ओ आ गए हन, ओदे विच ब्रिण पक गया, ओदे विच पानी भर गया। आपने वेख्या होएगा प्यारियो थोड़ा भी सेक भी वज जावे अग दा, ते स्किन जड़ी ना प्यारियो उथों दी ढिली हो जांदी है, एक फफोला फलूहा जेड़ा आ जांदा ओदे विच पानी भर जांदा है, इह जलण दी निशानी हुंदी है। स्किन जदों जल जावे, बहुत ज्यादा जल जावे ना प्यारियो, उत्थे ना शरीर काला जा पै जांदा, हड्डियां तक सड़ जांदियां, महाराज जी दियां तलियां जिहड़ियां पूरियां सड़ गईयां, बाकी सारा तन जिहड़ा प्यारियो निक्के वड्डे पाणी दे फलूहे सतगुरु महाराज जी दे तन दे उत्ते आ गए।
1: छाद चादरे दीर्घ चीरा,
0: ते देखो किहो जी अवस्था है प्यारियो सतगुरु महाराज जी दी, के इन्ने जदों फलूहे आपने कदे तजुर्बा कीता होवेगा प्यारियो, फलूहा आ जावे ते ओनू ओ कपड़े नूं वी नहीं लगण दिंदा, जे कपड़ा भी लग जावे ना प्यारियो ते उस वेले बहुत ज्यादा जलन महसूस हुंदी है, बड़ी पीड़ा हुंदी है। आपां कदे अपने जिन्हां ने हंडाया प्यारियो, कई वारी हो ही जांदा, भाणे वरत जांदे, कोई सेक बज जांदा, कदे तजर्बा तुहाडा वी होवेगा किन्नी पीड़ा हुंदी, किन्नियां दवाइयां लाउंदे, कपड़ा तक उहनूं नहीं लाउंदे आ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੂਹੇ ਹੀ ਫਲੂਹੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੌਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੇਟਣਾ ਕੀਤਾ।
1: ਚਰਨ ਜਰੇ ਬ੍ਰਿਣ ਹੋਏ
0: ਤੇ ਤਰੁਆ ਚਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਸੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਿਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ

कोय ना को होआ ना को होय जे वडे आप ते वड तेरी दात जंदन कर कह कीती रात खसम वसा रहते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनाओ करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहा हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपता सह मिल

सोई थी सी जो तू दे सोई हाँ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नहीं ध्याया जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाथा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जीए जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर वेखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवर डै भैले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जमोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन ए

तारा, सेवक सिख सभै कर तारा, मोर इच्छा निज कर दे करिए, सबैरन को आज संघरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो भर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास नवरिए, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जों करियह रच्छा, राख लेहो मह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा,

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई बाकत नेत। स्वर्ग बा स्वर्ग भर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो यह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छह सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन।

पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संता पुतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन

पयो जिसका सब सुधारो, जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई, नित नित रख

सदा अंग संगे अपहंग देखते गोफते नुसुदेत जनान गुरु गोविंद सिंह जी दरबार में तुर दरबारा सतखंड बसै लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सब दे तुर नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जगमग ज्योत विराज रही श्री अब चल नगरी अपार सतखंड

0: आज आवाज छोड़ो थोड़ा, आज लास्ट है ना भाई जी। हाँ इधर से चलो थोड़ा बेटा, आवाज आवाज बाहर जाओ। यहाँ नहीं बोलना,
1: बोले।

0: राष्ट्रपति
1: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
0: कल कलेसन माय मिटाओ
1: सिमरो जाल विशंबर एक है वेद प्राण सुन सुधक कर
2: राम नाम इंगाखर
1: किनका एक जी जी बसावे
2: बाकी महिमा गनी नावे
1: बाकी एक दर्श तुहारो
0: नानक पुस्तक

0: रब को सिमरे से पुरख प्रधान,
1: रब को सिमरे से बेमोहताज,
0: रब को सिमरे से सर्व के राजे,
1: रब को सिमरे से सुखवासी,
0: रब को सिमरे सदा विनाशी,
1: सिमरन ते लागे जन आप दयाला,
0: नाने जन की मंगे रवाला,
1: रब को सिमरे से परोपकारी,
0: रब को सिमरे तिन सत बलिहारी,
1: रब को सिमरे से मुख सुहावे,
0: रब

0: सिमरन कारज पूरे,
1: प्रभ के सिमरन कबो न चूरे,
0: के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभ के सिमरन सहज समानी,
0: के सिमरन न चलना सन,
1: प्रभ के सिमरन कमल बिगासन,
0: प्रभ के सिमरन अनजन कार,
1: सुप्रो सिमरन कांत न पार,
0: सिमर से जन जन को प्रमया,
1: नाना तीन जन सतनी पया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रकट आए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाय,
0: हर सिमरन वैश जति दाते,
1: हर सिमरन नीचो कुंड जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन कियो सकल कारा,
1: हर सिमरन में आप निरंकारा,
2: कर कृपा जिस आप बुझाया,
1: नानक गुरुमुख हासे।

0: पर नी छपे
1: हरकी भगत मुकत भव करे
0: नानक जन संग के ते तरे
1: पार जाती हर को नाम
0: काम देन हर हर गुण काम
1: सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संतित्व से
0: संत पर ता दुर सबन से
1: संत का संग बड़ पागी पाइए
0: संत की सेवा नाम दियाइए
1: नाम

0: पृथ्वी फिरे जीर जी
1: महा उदास कपिस धरती के
0: अगन माय हो मत परान
1: अनेक सब हैवर भूम दान
0: योनी कर्म करे बो आस
1: जैन मा संजम मत साधन
0: निमक निमक कर सिर कटावे
1: तो भी हो मैं मेल न जावे
0: हर के नाम संसार कछ नाही
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए
0: मन कामना तीर दे छुट
1: कर गुमान न मन ते हुटे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की मैल न तनते जात
0: देही को वो साधना करे
1: मन ते कबो न भी क्या टरे
0: जल धोवे वो दे अनी
1: शुद्ध कहां होए काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम गुदरे पतित बो मोच
0: बहु सियाणम जम का भो व्याप
1: अनि जतन कर तृष्णा त्रापे
0: एक अनेक अगन नहीं बुझे
1: ओट पादर के नहीं सीजे
0: फूटस नाही उप
1: प्या पे माया जाल
0: और करतू सगली जम डान

0: अपनी शोभा लो रे
1: साथ संगे हो मैं छोरे
0: को जन्म मरते डर
1: साजना की सरनी परे
0: जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके भल भल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साथ संग जाका मिटे बिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो कनिये सब ते ऊंचा
0: जाका मन होए सगर की रीना
1: अरह नाम तिन कट कट चीना
0: माना प्रेते बुरा मिटाना
1: देखे सगल से साजना
0: दुख जन सब दिशेता
1: नाने पाप पुण्य ले पा
0: निर्धन को धन तेरो नाओ
1: निर्धावे को नाव तेरा थाओ
0: निमाने को ब्रह्म तेरो माओ
1: सलकटा को देवो दान
0: रावण हार स्वामी
1: सलकटा के अंतर जामी
0: अपनी गद में जानो आप।

नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सत पर धर्म को ही रे मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या वासने तिकारा

0: कनि मक जप नान करी श्लोक काम क्रोध लोभ मोह विनस जाया मेव
1: नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव
2: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए
1: दुष्टा कर को रखवन माए
2: जय प्रसाद सुगंध तन लाओ
3: जिसको सिमरत परम गत पावे
2: प्रसाद बसे सुख मंदर
3: जिसे त्याए सदा मने अंदर
2: प्रसाद करे संग सुख बस
3: आठ पैर

0: सुख सहज सोई
1: मन आठ पैता का जस का विजय
0: सबको माने
1: मुक्ता को जस सन पसाने
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सगाते आइए केवल पार ब्रह्म नानक पसे थी कर जावे लिवला वो तिस राम सने मन सुख पावे हर जस कहत मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके मन सासा सिमरो प्रभु चे नानक ताकी पवत करे मानते सिमरत को आलसी जे मानते प्रभु को कबू ना बिसारे राख परोई प्रभु अपने मना ओटत बैठ

जय प्रसाद सुख से जे बसना जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद सुख से सुमावे गुर प्रसाद नानक मन जागो प्रभु मूल न मनो विसार को जाप है।

0: तथा अष्टपदी सात के संग मुख उज्जल होत,
1: सात संग मल सकली खोत,
0: सात के संग मिटे अभिमान,
1: सात के संग प्रकृति सो ज्ञान,
0: सात के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: सात संग सब होत निबेरा,
0: सात के संग पाए नाम रतन,
1: सात के संग एको पर जतन,
0: सात की महिमा बनने कौन परानी,
1: नानक सात की शोभा ब्रह्मा है समाने,
0: सात के संग अगोचर मिले,
1: सात के संग सदा पर फूले,
0: सात के संग आवे बस

0: नानक साथ के संग सफल जन्म,
1: साथ के संग नहीं कष्कर,
0: सज्जन बेटा तो निहाल,
1: साथ के संग कलू खतहर,
0: साथ के संग नरक पर रे,
1: साथ के संग यहाँ उहा सोहेला,
0: साथ संग मित्र कर मेला,
1: जो इच्छे सोई फल पावे,
0: साथ के संग न बिरता जावे,
1: पार ब्रह्म साथ रिद बसे,
0: नानक उदरे साथ सुन रसे,
1: साथ के संग सुनो हर नाम,
0: साथ संग हर के गुण गाओ,
1: साथ के संग न मनते बिसरे,
0: साथ संग सर पर निस्तरे,
1: साथ के

राष्ट्रपति जैसे जल में कमल लेप जैसे सुश्रम को शोक जैसे राज रंग को लगे तुल्पवान जो बसा को देखो चंदन लेप नानक जो पावक का सह सुभाव जैसे मेल न लगे जला जैसे तरु पर आकाश ब्रह्मज्ञानी के नए अभिमान मन अपने सबसे नीचा नानक जिन प्रभाव करे आत्म रस ब्रह्मज्ञानी जीना ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत भरसे ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युक्ता नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी परोपकार ब्रह्मज्ञानी लैतावत बंदा ब्रह्मज्ञानी सुफल फला नानक।

0: पाप ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी के सवन मनवाए
1: कौन जाने भी
0: ब्रह्मज्ञानी को सदा ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब

0: सात की टहल सत्संग सप्ते जने आपस को मंदा मन की वासना मन ते टरे नानक कोट में देखो ऐसा
1: प्रसन्न
0: की माया ते कोई
1: कर्म करत होय ने
2: करम
1: काओ फल की इच्छा नहीं बाचे
0: केवल भगत कीर्तन संग्राचे
1: अंतर सिमरन गोपाल
0: परो वत कृपाल
1: नानक
0: को वैष्णव परम रखवावे
1: भगवंत भगत का
0: सगल दया के दुष्ट का संग।

0: कार्पूजे सकल पार ब्रह्म जिस भगवती की मत उत्तम होवे माता नर पे विषण परीत नानक ऐसा भगवती पवन को पावे राम नाम तम मैं सुदे
1: राम नाम सारस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे सो पंडित फिर जो नावे
1: पुराण सिमृत बुझे।

0: आचार व्यवहारे
1: कोट भय तीर्थ वासी
0: कई कोट बंद रमे उदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे
0: कई कोट कप का विचारे
1: कई कोट नौतन नाम ध्यावे
0: नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमाने
0: कई कोट अंध ज्ञाने
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अभिंगातम निकोर
1: कई कोट पर दर्प को हिरे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश रमाए
1: जित जित लावो तित तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सरब उपाय
0: कई कोट पातर बिरंग निद्याय
1: कई कोट पौन पानी बेसंत
0: कई कोट देश भूम मंडल
1: कई कोट शशि असुर नखत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र सिद्ध
1: सगल सामग्री अपने सूत धारे
0: नानक जित जिस पावे तिस तिस निस्तारे
1: कई कोट राजस साम सातक
0: कई कोट वेद पुराण सिमरत शासक
1: कई कोट किए रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जानत
1: कई कोट किए चिर जीवे
0: कई कोट गिर में समाधि वे
1: कई कोट जग किन्नर पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच
1: सबके नेरे सब होते दूर
0: नानक आपल पत्र या पर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक सुरक निवासी
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे
0: कई कोट भोजनी फिरे
1: कई कोट बैठत ही खाए
0: कई कोट काले तक पाए
1: कई कोट किए धनवंत
0: कई कोट माया में चिंतन
1: जय जय बाणा तत राखे
0: नानक सब के प्रभु के हाथे
1: कई कोट भय वैरागी
0: राम नाम सब तिरलिव लागे
1: कई कोट प्रभु को खोजंते
0: आत्म मैं पार ब्रह्म लांते
1: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
0: दिल को मिल्यो प्रभु अविनाश
1: कई कोट मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म लागारंग
1: जिनको होए आप स्व प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जुगत तीनों विस्तार
1: कई बार पसरियो पासा।

0: अष्टपति
1: करण करावन करने जोग
0: ज्योतिष भावे सोई होग
1: थाप थापन हार
0: अंत नहीं कि पारा वारा
1: मैं धार अधर रहावे
0: मैं उपजे उत्तम समावे
1: मैं ऊंच नीच व्यवहार
0: मैं अनेक रंग प्रकार
1: कर देखे अपनी बढ़िया
0: नानक सब मेरे समाए
1: प्रपावे मानुगत
0: पावे प्रपावे ता पाथर तरावे
1: प्रपावे बिन सास तेरा
0: प्रपावे

0: अष्टपति सो नरकपति योग स्वान सो प्रतिष्ठा का जंत जलम मरे भोजन परमावे सो मूरकंदा ज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय
0: नानक यहाँ मुकता के सुपावे त्रिन समान का संग न जावे बल भीतरता का होए विनाश त्रिन में होए जाए बस मंत धर्म राय तिस करे कुआरे सोजन नानक दर के परवान संपावे सगले बिरतारे नरक सुरक पिर पेरा उतार हर दर के को कैसे गवे इसे भलाई निकट न आवे कौन आने ताकि निर्मल सोए तब इसको सुख ना ही कोए तब लग करम जोन में फिरता तब लग मैं चलना ही चीत तब लग करम राय दे सजाए गुर प्रसाद नानक को छूटे त्रिपद नावे माया पाछे पावे न तृप्तावे कब कब मरे सुपन मनोरथ मिलते सब काजे वड़ पागी किसे परापत होए सदा सदा नानक हर जाप इसके हाथ कहाँ विचार आप प्रभु सोए

0: सब कुछ उसको करने हार शांतन अंतर एक सोए बहुत करे रंग पार नान कीमत कह न जाए गुर प्रसाद की में बखियाने कोट में देखने मिले चीना असुंदरा पार अनूप
1: निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: गड़ गड़ सुनी सर्वन बकाने पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
2: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
0: संत सरन

0: अष्टपति
1: संत के दुखन आर जा घटे,
0: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन सो बाते ही ना, संत के दुखन तान भ्रष्ट होए,
1: कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक सत्संग निंदक भी तरे, संतन के दुखन काग जो लवे,
1: संतन के दुखन सरब जोन पाए,
0: संत के दुखन जोन किरमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सबको छले,
1: संत के दुखी ते संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नेक निचाए,
1: संतों की कथाओं को नाए,
0: नानक संत पावे ताओ भी गत पाए,
1: संत का निंदक मात ताए,
0: संत का निंदक खिट कर न पाए,
1: संत का निंदक मात यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राय ते,
0: संत का निंदक दुख यार दीना,
1: संत के निंदक को सरब रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोक, संत का दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के
0: दुखी को सब त्यागे,
1: संत
0: का दुखी सदा बिकारी,
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत की दुख ना सुखते टरे।

0: दुखियन तरते तो
1: जो सास बिना मृत किलोता
0: दुखी की जड़ किच
1: ना पे खाए
0: संत के दुखी को अवर न राखन
1: नानक संत पावे तले वार
0: दुखी बिलाए
1: जो जल भी उन मछली।

0: संभव जाए।
1: राष्ट्रपति
0: मानुकिट एक वृत्ति सब जान
1: देवन को एक भगवान
0: रहे
1: बाल कृष्ण लागे आए
0: रखे एक
1: मानु के किचाई हाथ
0: भूसुक हो
1: इसका नाम रखन परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
1: नानक बिगड़ न लागे कोई
0: मन में कर निरंकार
1: मेरे सत्योहार।

0: तो एक एक पचाने
1: कियो सोजी जाने
0: नाम संग किसका मन मानिया
1: नानक ने निरंजन जानिया
0: अपन आप सुजय
1: किसकी जानो कृष्णा बुझे
0: अपन हर जस कहे
1: सराब।

0: के दुख
1: हर पर मंचित
0: सो संस्वेला नहीं डुलावे
1: जिस पर अपना जिस पर अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किससे डरे
1: जैसा सा तैसा दिष्ट आया
0: अपने कारज में आप समाया
1: सौदा सौदा सीजिया
0: देखो
1: सब कुछ मोल
0: नानक सो सुखम सोए
1: न कुछ मरे
0: आप

0: नानक दिन पुरख को उत्तम कर मान
1: रंग
0: सदा सदा बसे हर संग करने आर पचाने सोए
1: के बीच मीट लगाना
0: जैसा साथ है साधिष्ठाना
1: समाये समाये।

0: प्राणी गुरचरण लगन निस्तरे
1: अंधकार दीपक पर
0: गुरदर्शन देख मन होए विकास
1: महा उद्यान में मारक
0: साधु संग में।

0: जात खेप संत संचार
1: अमर त्याग क्या जंजाल
0: धन धन कहे सब कोई
1: मोको जल अंदर के सोए
0: व्यापार बिरला व्यापार
1: नानक ताके सत बलिहारे
0: चरण साध के धोई धोई पी
1: अरब सात को अपना जियो
0: साध की दूर करो स्नान
1: साधु पर जाइए कुर्बान
0: सेवा वट भागी पाई
1: साध संगर कीर्तन गाइए
0: अनेक विघंते साधु राखे
1: हर गुण गाय अमृत रस चाके
0: ओट गई संते दराय
1: सरब सुख नानक ते पाया
0: मिट कौ जीवन हार
1: भूखे को देवत दार
0: दान जाकी दृष्टि
1: पूरब लिखे का लेना पाए
0: सब कुछ तिसका हो करने
1: इस बिंदु सरोवर न हो गए
0: जन सदा सदा दिन रहे
1: सब ते उच्च निर्मल करने
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल तिया
0: जाके मन गुर की प्रति
1: इस जन आवे यार प्रचीत
0: भगत भगत सुनिए तिहलो
1: जाके देखो होए
0: सच करनी सच ताकि रहे
1: सच दे सच मुत कैत
0: साची दृष्ट साचा
1: सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जन

जो कर पाया सोई हो गिसका मंत्रण जाने हो रहे करता के तब मैं तपिसल प्रेस में भोगी नानक इस पुरख का।

0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: किसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना जाके रंग
0: नाना पे करे
1: विस्तार
0: प्रभव नासी एक कम कार पूरे पूरे सब टाए
1: नाना विधि के रिबन बनाए
0: अपने कीमत आपे पाए
1: जिसके सब जिसके थाओ
0: सब जब जीवे नानक करना नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे सगल आकार नाम के संगुद्रे सुन श्रवण नानक चौथे पद में सो जन कर पाए पूरक सत केवल प्रदान सात पूरक सब माए समाने मूल सत सत उत्पत जिसे बुझाए तिसे सब फले विश्वास सत नानक गुरते पाए सत्य जन जाके सत बचन साधु।

0: दर्शन ससत पे कन्हार
1: नाम सत सत्य
0: आप सत ससब धारी
2: शब्द
0: सत सत प्रवक्ता
2: सत
0: सब हुए
3: नानक सत सत।

0: सौ सेवक साथ साथ समारे,
1: उनका पर्दा ढके,
0: अपने सेवक की सर पर रखे, अपने सेवक को नाम जपाए,
1: सेवक किया पत्र
0: ताकि गर्वित कोई न लाके,
1: सेवक को कौन पहुँचे,
0: सब के सेवक ऊंचे ऊंचे,
1: अपनी सेवा लाया,
0: नानक सौ सेवक दे देश भक्त आया,
1: की कीरी महकल रखे,
0: बसम करे

0: सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका
1: नानक हर गुण
0: अष्टपति
2: सतगुर सिक्की करे प्रपाल
0: सेवक को गुर सदा दयाल
2: गुरु दुर्मत मल हिरे
0: नाम उचरे
2: सतगुर सिक्के बंधन काटे
0: काटे हटे
2: सतगुर सिक्को नाम दंदे सतगुर सिक्का हलत पुलत सवारे
1: सतगुर सिक्को जी नाल
0: समारे
2: के गृह सेवक जो रहे
0: आज्ञा मन में सहे
2: आपस को कर कछु न जनावे मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कारज रास
2: सेवक
0: इसको होत पर आप स्वामी
2: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो से।

0: सियानतलेना जाइए
1: नाना कैसा गुरवड़ पागी पाइए
0: सफल दर्शन पे गत पुनी
1: परसत चरण गत निर्मल
0: वेदर संग राम गुण रवे
1: पार ब्रह्म की दरगे गवे
0: सुनकर बचन कर अगाने
1: मन संतो का तंपत आने
0: आख जाका मन
1: अमृत जिस पे के ओ संत
0: गुण बियंत किमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस लय मिलाए
0: देवा एक उस्तत अनेक
1: सात पुरख पुरन विवेक
0: आओ बोलना पा उचित प्राणी
1: अगम गोचर प्रभ निर्वाणे
0: मेरा हार निर्वेर सुखदाई
1: ताकि कीमत किने न पाए
0: नानक भगत बंधन नित करे
1: चरण कमल हृदय सिमरे
0: सद बलहारी सदगुरु अपने
1: नानक जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने
0: ये हरस पावे जन कोए
1: अमृत पीवे अमर सो होए
0: उस पुरख का नहीं कदे विनाश होए
1: जाके मन प्रकटे गुणदास
0: आठ पैर हर का नाम ले
1: सच उपदेश सेवक को दे
0: मोह माया के संग ना ले
1: मन में राखे हरे हरे
0: अंधकार दीपक प्रकाशे
1: नानक ब्रह्म दुख ते तेना से
0: आठ आठ वर्ताई
1: अनंत पया दुख नाटे भाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेश
1: साधु के पूरन उपदेशे
0: बहु चुका निर्वो होए बसे
1: सगल व्याध मन ते के न से
0: जिसका तिन कृपा तारी
1: ना संग जब नाम मुरारी
0: पाए चुके प्रभु गवन
1: सुन नानक कर हर सर्वन
0: निर्गुण आप सरगुण भी हो
1: कलादार जिन सगली मोए
0: अपने चरित्र प्रभु आप बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिन दूजा नाही कोई
1: सरम निरंतर एको सोए
0: पोत पोत रव्या रूप रंग
1: भय प्रकाश साथ के

0: राष्ट्रपति
1: संत जना मिल करो विचार
0: एक सिमर नाम अधार
1: समीत बिसारो
0: चरण कमल नित मैं और दारो
1: कारण सो प्रभ समृद्ध
0: दिन कर गाओ नाम अरवत
1: संचो हो भगवंत
2: संत जना का निर्मल मन
1: एक आस रखो मन माया।

0: जगन लागे
1: जागे प्रेम से हसो
0: चलता जी ठांडा हर नाम
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: बिन से पूर्ण होए
1: भगत पाए आ तम पर घास
0: जय बसे अविनाश
1: कौन नानक काटी जम पासे
0: विचार कहे जन सा
1: जन्म मरे सो काचो काचा
0: गवन मिटे प्रभु से
1: आप प्यार शरण गुरुदेव
0: जन्म का होए उधार
1: हरे सिमर प्राण आधार
0: पावन छूटन हार
1: सिमर सा सब वेद विचारे
0: भर करो मन लाए
1: मन वांछित नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे धना
1: तू क्या लपटावे मूरख मना
0: मीत कुटुमर बनता
1: इनते कहो तुम कवन सनाता
0: रंग माया विस्तार
1: इनते कहो कवन छुटकार
0: रथ अस्वारी
1: जोटा डम जोट पासारे
0: नाम
1: विसार नानक पछताना
0: कीमत तूले याने
1: भगत बिना बोर डूबे स्याने
0: बत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: कमल राखो मन मान
1: जन्म जन्म के किल बिक जाए
0: जपो अवरा नाम जप
1: सुनत कहत रह जग पाओ
0: सार भूत सथर को ना
1: सह सुभाय नानक गुण गाओ
0: गावत रे उतरस में
1: बिना जाए ओ मैं बिखैल
0: अंचित बसे सुख ना
1: सास रासर नाम संभाल
0: सास यानप सगली मन
1: सास

0: पूरनपुर रहो प्रव्याप
1: स्तर एक ते भय
0: एक रात प्राचक गए मानतने अंतर एक प्रभराता
2: गुर प्रसाद नानक

0: सदा प्रभु के गुण
1: गाओ, सास प्रभु तुम्हें ते आवो,
0: चरण कमल छू लागे
1: भगत करो प्रभु के नित नित,
0: एक ओट एको आधार
1: नानक मांगे नाम प्रसार,
0: आपकी दृष्टि महासुख हो
1: हर रस पावे बिल्ला कोए,
0: चाख्या से जंत
1: पूरन पुरक नहीं डोलाने,
0: सुभर भरे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाओ साथ के संग,
0: परे शरण आन सब त्याग
1: अंतर परला सर मिल लाग,
0: बड़ भागी जपिया प्रभु सोए
1: नानक नाम रते सुखोए,
0: सेवक की मनसा पूरी
1: सदगुरु ते निर्मल मत लय,
0: जन को प्रभु हो दया
1: सेवक की नो सदा निहाल,
0: बंधन काट मुकत जन भया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
0: इच पुनी सरदा सब
1: राव रया सत्संग जूरी,
0: जिसका साथ इंद्रिया मिला
1: नानक भक्ति नाम समाए,
0: सोकुं बिसरे जे घाल भाने,
1: सोको बिसरे जे किया जाने,
0: सोकुं बिसरे जिन सब दिया,
1: सोको बिसरे जे जीवन जिया,
0: सोकुं बिसरे जे अगन में राखे
1: गुर प्रसाद को बिल्ला लाके,
0: सोकुं बिसरे जे बिखते काढ़े
1: जन्म जन्म का टूटा काटे,
0: गुर पूरे तत ए बुझाया
1: प्रभु अपना नाम एक जन त्याया,
0: साजन संत करो यो काम
1: आन त्याग जपो वर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पाओ
1: आप जपो अमरा नाम जपाओ,
0: भगत भाई तेरे संसार
1: बिन पंक्ति तन हो सी चार,
0: कल्याण सुख निध नाम
1: बूढ़ा जात पाए विश्राम,
0: दुख का होत
1: ना नानक नाम जपो गुंतास,
0: जी प्रीत प्रेम रस
1: मन तन अंदर हे सुहाओ,
0: नेत्र हो पेक द्रस सुख होए
1: मन बिकसे सा चरण तोए,
0: भगत जना के मन तन रंग
1: बिल्ला को पावे संग,
0: बस दुजे कर्मया
1: गुर प्रसाद नाम जप लया,
0: बाकी उपमा कहीं न जाए
1: नानक रया सरब समाए,
0: प्रभु बख्शन दीन दया
1: भगत वचन सदा कृपाल,
0: नाथ गोविंद गोपाल
1: सरब कटा करत पाल,
0: पूरक कारण करता
1: भगत जना के प्राण धार,
0: जो जो जपै से होए प्रीत
1: भगत पाए लावे मन हित,
0: हम निर्गुण यार नीच अजान
1: नानक तुमरे शरण पुरक भगवान,
0: सब वैकुंठ मुखत उपाय
1: एक निवा करके गुण गाए,
0: अनेक राज भोग बढ़िया
1: हर के नाम की कथा मन भाई,
0: ओ भोजन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत,
0: सो करनी शोभा धनवंत
1: प्रेम से पूरन गुरमंत, साध संग प्रभ देओ निवास
2: सब सुख नानक परगास,
1: सारे गुण निर्गुण।

0: अष्टपदी
1: जब कार्य कछु न दृष्टिता
0: पाप तब कहते होता
1: जब दारी अपन सुन समा
0: तब पैर विरोध के संग कमात तब अरक सो को किसे व्यापत
1: अपन आप ब्रह्म
0: तब मोम का कि सो वत परम
1: अपन खेल अपरती जा
0: नानक करने आर न दूजा
1: जब हो वक्त प्रभु केवल धनी
0: तब बन मुकत को किसको गने
1: जब एक हर अगम पार
0: तब नरक सुरंग को कौन अवतार है
1: जब निर्गुण प्रभु सज सुमाए
0: तब शिव शक्त तब कवन निडर कवन कट डरे नानक ठाकुर अगम पार
1: है
0: जन्म मरण को कहा विनाशन
1: पूरन करता प्रभु सोए
0: तब जमकी त्रास को के सोए तब चित्र को पद के स्पोचत लेका
1: निरंजन गोचर
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाजे नानक अपन रूपा पे ऊपर जा
1: निर्मल पूरक पूरक
0: मैल को क्या तोता
1: निरंजन निरंकार निर्वाण
0: कौन को मान कौन अभिमान है
1: स्वरूप केवल जगदीश
0: चल चेत जगत को कीस
1: ज्योत स्वरूप ज्योत संग समावे।

0: राष्ट्रपति
1: आप कथे आप सुनने हार
0: आपे कापे विस्तार
1: इस भावेता सृष्टि
0: अपने पाणे लय समाए
1: ते भी नाय की छो
0: आप सो सब जगत परोए
1: जाको प्रभु जी आप
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो संदर्शी तत्काल
0: नाना।

0: संत संग अंतर प्रभु बिठा
1: नाम प्रभु का लागा मिटा
0: सगल सामग्री एकच कटमा है नवनीत अमृत प्रभु का नाम सुन समाध अनत तैनात
1: देखा
0: जिस आप दिखाए
1: जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो पाहर अनंत धरन महे आकाश प्याल बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म पवन पानी बैसन शर्मा है तिससे भिन्न नहीं कोठाओ
1: नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण स्मृत में देख

0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म,
1: संत जना के हृदय सब करण,
0: संत जना सुने सब बचन,
1: सर्वव्यापी राम संरचन,
0: जिन जाता तिसकी एह रहत,
1: संत बचन साधु सब कहे,
0: जो जो होए सोई सुख माने।

0: किने कछ करा।
1: आप पला कर तू दतनी की,
0: आपे जाने अपनी जी की,
1: आप सास तारी सब सास,
0: कोत कोत आपन संग्राज,
1: साकी गतमित कही न जाए,
0: दूसर होय तसो जी पाए,
1: इसका किया सब परवार,
0: गुर प्रसाद नानक क्यों जान,
1: जो जाने ते सदा सुख होए,
0: आप लाए ले प्रभ सोए,
1: वो तनवंत।

0: प्रधान पुरुष प्रकट सब लोए मानवे अवजान
1: खार चले जन सो
0: नानक जिसे परापत होए
1: बुद्ध
0: ज्ञान सरपते सिद्ध
1: जो
0: ज्ञान जे सुतम स्नान
1: पदारत कमर पगा
0: सत्य

तुमरी गात में ते तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। पिंड सब तेरा वाहे कहो नानक सब तेरी वड़ाई।

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताका बिगन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास जी की बिरता होए सो गुर पे अरदास कर छोड़ सियानव सगल मन तन अरप धर वाहिगुरु वाहिगुरु।

0: गुर कलगी धर सो हमरी रक्षा करे गुर कलगी धर बोले सो
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

पापन विचार हमच नरस अवतार हमच से हमच रोय हमच परिय हमच तवे हमच जाति सिखोय हमच मूर्ख हम सियाणा मुक्त किसार नारायणा हमच माया हमचा हमें कपर्जंत पाया हमें बुझे ता दर्श जय ज्ञान।

कौड़े सेव कितने संतों के दिन सचो सध्याया उन्नी मंदे बिनार क्यों कर सुंदर धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदनान पाने थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला।

नानक जन पाए के समाले समना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जन पाए जाग ते सवारी स्वास्थ्य दस दे।

0: काल हस्पताल बीओ बीच पत लगे आपके कोयदा जे खोय तो गर तीर्थ हो नान पाए वारा कोरे मासो थे विच कम चुवाई संपादन हो नान भक्ति जेर पे कुड़े सोय ना कोई महला पहला
1: लपाव जो राजा मेहता कुड़ हुआ सिरदार काम ने सुन पूछे बह बह कर विचार अंधी रेत ज्ञान होने पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे